0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और जूलियट क्रिस्टोफर।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय।

अध्याय के 13वें और 14वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 7वें अध्याय में उपदेशक ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, अस्तु मनुष्य मूर्ख नहीं बने और न ही मूर्खों जैसी हरकतें करे, बल्कि बुद्धि और विवेक के साथ अपना जीवन यापन करे। श्रोताओं, जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से अपनाने के लिए इस तथ्य पर मनन चिंतन जरूरी है कि ईश्वर की तुलना में हम मनुष्यों का क्या स्थान है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो। जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया, उसे कौन सीधा कर सकता है? सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। उसका परामर्श है कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों बातों को ग्रहण किया जाए। जिंदगी तुम्हें जो दे उसे ले लो और जितना हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, और उन दोनों में संतुलन बनाकर रखना और जीवन जीना ही जीवन है। आगे 7वें अध्याय के 15 से लेकर 18 तक के पदों में उपदेशक न्याय और प्रज्ञा की चर्चा कर कहता है, उसने अपने घमंड के दिनों में सब कुछ देखा, संसार की हर खुशी में खुशी मनाई, उसने दुष्टों को फलते फूलते देखा, आनंद मनाते देखा, जबकि भले लोगों को दुख झेलते देखा, जो कि सरासर अन्याय की बात है। वह मनी मन यह दलील देता है कि यह कैसा न्याय है कि जो भला है, जो धर्मी है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है और जो दुष्ट है वह आराम की जिंदगी जीता है। कहता है, न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, और फिर न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। दुख सुख, धर्म और संसार, नैतिकता भौतिकता, दोनों के बीच संतुलन को बरकरार रखकर जीवन यापन करने में ही समझदारी है। उपदेशक कहता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। इनमें प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। ये पद इस प्रकार हैं। प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शासकों से अधिक शक्तिशाली बना देती है। संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओ, वस्तुतः उपदेशक ग्रंथ का सातवां अध्याय दुनियावी सुख सुविधाओं के भ्रम और जिंदगी की यथार्थ वास्तविकताओं के बीच अंतर बताने वाली ज्ञान की बातों का संकलन है। यह सिखाता है कि अच्छी शोहरत, प्रतिष्ठा अथवा ख्याति, धैर्य या सब्र और फिर मृत्यु की वास्तविकता को पहचानना तथा स्वीकार करना एक अर्थपूर्ण जिंदगी की कुंजी है। सातवें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों में कहता है कि प्रज्ञा बुद्धिमान को शक्तिशाली बना देती है, और यह इसलिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रज्ञा के यानी कि ज्ञान के मूल्य को समझता है, वह उसकी सराहना करता है, वह ज्ञान को संजोकर रखना जानता है, वह मानवीय कमजोरियों को जानता है, वह यह भी जानता है कि सभी मनुष्य पाप के अधीन हैं और उनमें वह खुद भी शामिल है। इसीलिए उसकी शक्ति 10 शासकों से भी अधिक होगी। फिर उपदेशक परामर्श देते हुए कहता है, लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओ, इस स्थल पर उपदेशक बड़ी समझदारी से इस बात को प्रस्तुत कर देता है कि हम हमारे लिए दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, किंतु अन्यों के बारे में कुछ भी अनर्गल कह देते हैं, प्रायः बिना सोचे समझे बक देते हैं, जो कि अनुचित है। इसलिए कि जब दूसरे, यहाँ तक कि हमारे अधीन काम करने वाले, ऐसी बातें हमारे बारे में कहने लगते हैं, तब हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अस्तु, किसी के भी बारे में अनर्गल न बका जाए। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा भला न सोचें या कहें, तो हम भी अन्यों के बारे में बुरा न सोचें, बुरा न बोलें। श्रोताओ, कभी कभी दूसरों की कही और की गई बुरी या बिना सोचे समझे की गई बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हम निश्चित रूप से यह नहीं चाहते कि हमें कोई हमारे सबसे बुरे पलों या बुरे शब्दों से आंके या बुरे पलों के लिए हमें याद करे। उपदेशक का कहना है कि किसी को मत कोसो, ताकि और कोई भी तुम्हें न कोसे। आगे सातवें अध्याय के 23वें और 24वें पदों में उपदेशक कहता है कि प्रज्ञा दुर्लभ है। मैंने प्रज्ञा से इन सब बातों की छानबीन की है और कहा, मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने का निश्चय किया, किंतु यह मेरी शक्ति के परे था। जो अस्तित्व में आया वह हमारी बुद्धि के परे है, वह गहरा है, बहुत गहरा है, कौन उसकी थाह ले सकता है। श्रोताओ, उपदेशक समझ गया था कि प्रज्ञावान बनने की उसकी इच्छा हमेशा सच्ची बुद्धि से पूरी नहीं होती। श्रोताओ, ये मान लेना कि जो कुछ इस धरती पर अस्तित्व में है वह हमारी समझ से परे है, यह विनम्रता का काम है। विनम्रता पूर्वक हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ अस्तित्व में है वह हमारी बुद्धि से परे है। बाइबल आचार्य किडनर कहते हैं, प्रज्ञा न पाने की नाकामी को ईमानदारी से मानना, असल में हर कदम के साथ उसे दूर होते देखना, यह जानना कि हमारी कोई भी बात कभी भी चीजों की तह तक नहीं पहुंचती, यह समझदारी की शुरुआत ही नहीं बल्कि शुरुआत तक पहुंचने का एक उत्तम रास्ता है।
अस्तु श्रोताओं, मनुष्य यह स्वीकार करे कि जिस ईश्वर ने उसे रचा वही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसकी महिमा अपरंपार है।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने लोक धर्मियों परिवार और जीवन को प्रोत्साहन देने हेतु गठित पर्म धर्म पीठ के द्वारा आयोजित कलिसियाई संघों, विश्वासियों और नए समुदायों को प्रोत्साहित करने वाले संयोजकों के संघों से भेंट की। अपने संबोधन में संत पापा ने उन्हें कहा, कलिसिया यीशु ख्रिस्त के द्वारा एक वैश्विक मुक्ति की निशानी हेतु स्थापित की गई है और यह एक वह स्थल है जहां हम ईश्वर की इच्छा को हर जाति और धर्मों के लोगों के लिए पाते हैं, जो ख्रिस्त में मिलने वाले मुक्ति के फल को प्राप्त और अनुभव करें। इस अर्थ में कलिसिया की प्रकृति को हम संस्कार स्वरूप पाते हैं, जिसका निश्चित रूप में बाह्य और संस्थागत आयाम है। इसके साथ ही हम इसे एक प्रभावकारी एकता के निशानी स्वरूप पाते हैं, जिसके द्वारा हम त्रिएक ईश्वर के जीवन में सहभागी होते हैं। संत पापा ने विश्वासियों और कलिसियाई संघों के सदस्यों से कहा कि यह लोक धर्मियों का प्रशासन है जो बपतिस्मा में हमें ख्रिस्त के राजकीय पदों से विभूषित करता है। यह हमारे लिए वह स्थल बनता है जहां हम दूसरे विश्वासियों संघ के जीवन की सेवा हेतु बुलाए जाते हैं, जो हमें दूसरों की स्वतंत्र अभिव्यक्तियों को सुनने हेतु साझा आत्मपरख का निमंत्रण देता है। संत पापा ने पवित्र आत्मा के प्रेरणा में तीन मुख्य बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यह सबों की भलाई हेतु हो, अर्थात इसके द्वारा समुदाय, संघ और पूरी कलिसिया का हित हो। अतः शासन का दुरुपयोग व्यक्तिगत हित या दुनियावी रूप में प्रसिद्धि और शक्ति के उपयोग हेतु ना हो। दूसरा, यह ऊपर से दबाव के रूप में कभी उपयोग ना हो। अतः स्वतंत्रता में चुनाव जो उसे प्रभावकारी बनाता है। तीसरा, संघ के शासन में आत्मपरख शामिल हो जो आदर्शों को सत्यापित करते हुए उनका उचित उपयोग करता हो। संत पापा ने शासन के संबंध में कुछ बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि उनमें एक दूसरे को सुनना, सह उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, भ्रातृत्व में निकटता और सामुदायिक आत्मपरख की विशेषताएं सदैव होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे लिए दिशा निर्देशिका की भांति हैं, लेकिन इनमें सदैव अधिकारी के कार्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संत पापा लियो ने सियेरा लियोन, बांग्लादेश, यमन, रवांडा, नामीबिया, मॉरिशस, चाड और श्रीलंका के अप्रवासी नए राजदूतों का प्रत्यय पत्र स्वीकारते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें उनके कार्यों के लिए शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने अपने संबोधन में उन्हें कहा, कोई भी देश, समाज और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन अपने को न्यायपूर्ण और मानवीय तब तक घोषित नहीं कर सकता है अगर वह अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी ताकत या खुशहाली के तर्ज पर हिसाब करते हुए हाशिए पर रहने वालों को नजरअंदाज करता हो। वास्तव में सबसे कमजोर और भुला दिए गए लोगों के लिए ख्रिस्त का प्रेम हमें हर तरह के स्वार्थ का परित्याग करते हुए गरीबों और कमजोरों के लिए कार्य करने का आह्वान देता है। संत पापा ने नए राजदूतों का स्वागत करते हुए कहा, ऐसे समय में जब दबदबा कायम करने हेतु हथियारों के जरिए शांति की चाह की जाती है, सभी स्तरों में द्विपक्षीय, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय एक ऐसी राजनीति की अति आवश्यकता है जो वार्ता को बढ़ावा दे और देशों में एक आम सहमति को स्थापित करने का एक माध्यम बने। उन्होंने कहा, ऐसी वार्ता जो हमें शांति की खोज हेतु सच्चे मार्ग में ले चलती हो, या हमें सच्चाई को तोड़ मोड़ किए बिना उन शब्दों में अभिव्यक्ति की मांग करती है जो सत्य को प्रकट करते हैं। संत पापा ने कहा कि केवल इस तरह से गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के मामलों में भरोसा फिर से स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह स्वार्थ का परित्याग करना है जो हम में एकजुटता की भावना लाती है, जिसके माध्यम हम राजनीति में सेवा को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूती लाते हैं, जो हमारे लिए वार्ता और आपसी मिलन हेतु एक स्थल तैयार करता है।
अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने राजदूतों से कहा, आपकी प्रेरिताई वार्ता में मजबूती लाए, आपसे समझ को सुदृढ़ बनाए और हमारी दुनिया में जरूरी शांति स्थापना हेतु योगदान दे। उधर 19 मई को संत पापा लियो 14वें ने कास्टल गंदोल्फो में वेटिकन आकाश लोचन का दौरा किया और वहां मौजूद लोक धर्मियों और शोध कार्य में संलग्न लोगों से भेंट की। यह पहला अवसर नहीं था कि संत पापा लियो ने वेटिकन ऑब्जर्वेटरी की भेंट की। इसके पहले भी वे 20 जुलाई 2025 को चंद्रमा पर उतरने की 56वीं साल गिरह पर वेटिकन आकाश लोचन की भेंट की थी। यह खगोलीय आकाश लोचन रोम के निकट कस्तल गंदोल्फो में स्थित है, जहां संत पापा अपनी व्यस्तता में भी समय निकालकर मंगलवार को थोड़ा आराम में समय बिताया करते हैं। कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि कम्युनिज्म के तहत धन्य शहीदों की शहादत हमें सिखाती है कि कोई ऐसी मानवीय स्थिति नहीं है, चाहे वह कितनी भी बुरी या गलत क्यों ना हो, जिसमें हम ख्रीस्त को नहीं देख सकते हैं। कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि शहादत मानवीय बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि खुद को ईश्वर की कृपा से तब तक भरने देना है जब तक कि मैं के लिए जगह ना बचे, बल्कि सिर्फ ईश्वर के, तुम और कलीसिया के, हम के लिए जीना हो। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और जूलियट क्रिस्टोफर।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। इस ग्रंथ में लेखक ने बताया है कि ईश्वर के कार्य मनुष्य की समझ से परे हैं और सांसारिक सुख संपत्ति व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ का सब कुछ नश्वर है। उपदेशक ग्रंथ का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मनुष्य के सुख दुख और संपन्नता विपन्नता की प्राप्ति का आधार निश्चित नहीं किया जा सकता। पक्ष विपक्ष के तर्कों की जांच के बाद लेखक इसी उत्तर पर पहुंचता है कि ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसका प्रसन्नता पूर्वक उपभोग करें और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर की शरण जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे सुख और शांति का स्रोत हैं।

ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें और 14वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 7वें अध्याय में उपदेशक ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, अस्तु मनुष्य मूर्ख नहीं बने और न ही मूर्खों जैसी हरकतें करे, बल्कि बुद्धि और विवेक के साथ अपना जीवन यापन करे। श्रोताओं, जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से अपनाने के लिए इस तथ्य पर मनन चिंतन जरूरी है कि ईश्वर की तुलना में हम मनुष्यों का क्या स्थान है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन आनंद मनाओ, दुख के दिन यह सोचो कि ईश्वर ने दोनों को बनाया है। मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। उसका परामर्श है कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों बातों को ग्रहण किया जाए। जिंदगी तुम्हें जो दे उसे ले लो और जितना हो सके उतना अच्छा करो, क्योंकि मनुष्य नहीं जानता कि उसके बाद क्या होने वाला है। जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, और उन दोनों में संतुलन बनाकर रखना और जीवन जीना ही जीवन है। आगे 7वें अध्याय के 15 से लेकर 18 तक के पदों में उपदेशक न्याय और प्रज्ञा की चर्चा कर कहता है, उसने अपने घमंड के दिनों में सब कुछ देखा, संसार की हर खुशी में खुशी मनाई, उसने दुष्टों को फलते फूलते देखा, आनंद मनाते देखा, जबकि भले लोगों को दुख झेलते देखा, जो कि सरासर अन्याय की बात है। वह मनी मन यह दलील देता है कि यह कैसा न्याय है कि जो भला है, जो धर्मी है, उसे कष्ट भोगना पड़ता है और जो दुष्ट है वह आराम की जिंदगी जीता है। कहता है, न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, और फिर न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। दुख सुख, धर्म और संसार, नैतिकता भौतिकता, दोनों के बीच संतुलन को बरकरार रखकर जीवन यापन करने में ही समझदारी है। उपदेशक कहता है, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है वह दोनों कर पाएगा।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के सातवें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। इनमें प्रज्ञा, विवेक और ज्ञान को गुणी व्यक्तियों की पहचान निरूपित किया गया है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य यथार्थ शक्ति प्राप्त करता है। ये पद इस प्रकार हैं। प्रज्ञा बुद्धिमान मनुष्य को नगर के 10 शासकों से अधिक शक्तिशाली बना देती है। संसार में ऐसा कोई धार्मिक मनुष्य नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता। लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओ, वस्तुतः उपदेशक ग्रंथ का सातवां अध्याय दुनियावी सुख सुविधाओं के भ्रम और जिंदगी की यथार्थ वास्तविकताओं के बीच अंतर बताने वाली ज्ञान की बातों का संकलन है। यह सिखाता है कि अच्छी शोहरत, प्रतिष्ठा अथवा ख्याति, धैर्य या सब्र और फिर मृत्यु की वास्तविकता को पहचानना तथा स्वीकार करना एक अर्थपूर्ण जिंदगी की कुंजी है। सातवें अध्याय के 19 से लेकर 22 तक के पदों में कहता है कि प्रज्ञा बुद्धिमान को शक्तिशाली बना देती है, और यह इसलिए कि एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रज्ञा के यानी कि ज्ञान के मूल्य को समझता है, वह उसकी सराहना करता है, वह ज्ञान को संजोकर रखना जानता है, वह मानवीय कमजोरियों को जानता है, वह यह भी जानता है कि सभी मनुष्य पाप के अधीन हैं और उनमें वह खुद भी शामिल है। इसीलिए उसकी शक्ति 10 शासकों से भी अधिक होगी। फिर उपदेशक परामर्श देते हुए कहता है, लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो, नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है। श्रोताओ, इस स्थल पर उपदेशक बड़ी समझदारी से इस बात को प्रस्तुत कर देता है कि हम हमारे लिए दूसरों की बातों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, किंतु अन्यों के बारे में कुछ भी अनर्गल कह देते हैं, प्रायः बिना सोचे समझे बक देते हैं, जो कि अनुचित है। इसलिए कि जब दूसरे, यहां तक कि हमारे अधीन काम करने वाले, ऐसी बातें हमारे बारे में कहने लगते हैं, तब हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। अस्तु किसी के भी बारे में अनर्गल न बका जाए। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में बुरा भला न सोचें या कहें, तो हम भी अन्यों के बारे में बुरा न सोचें, बुरा न बोलें। श्रोताओ, कभी कभी दूसरों की कही और की गई बुरी या बिना सोचे समझे की गई बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। हम निश्चित रूप से यह नहीं चाहते कि हमें कोई हमारे सबसे बुरे पलों या बुरे शब्दों से आंके या बुरे पलों के लिए हमें याद करे। उपदेशक का कहना है कि किसी को मत कोसो, ताकि और कोई भी तुम्हें न कोसे। आगे सातवें अध्याय के 23वें और 24वें पदों में उपदेशक कहता है कि प्रज्ञा दुर्लभ है। मैंने प्रज्ञा से इन सब बातों की छानबीन की है और कहा, मैंने प्रज्ञा प्राप्त करने का निश्चय किया, किंतु यह मेरी शक्ति के परे था। जो अस्तित्व में आया वह हमारी बुद्धि के परे है, वह गहरा है, बहुत गहरा है, कौन उसकी थाह ले सकता है। श्रोताओ, उपदेशक समझ गया था कि प्रज्ञावान बनने की उसकी इच्छा हमेशा सच्ची बुद्धि से पूरी नहीं होती। श्रोताओ, ये मान लेना कि जो कुछ इस धरती पर अस्तित्व में है वह हमारी समझ से परे है, यह विनम्रता का काम है। विनम्रता पूर्वक हम स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ अस्तित्व में है वह हमारी बुद्धि से परे है। बाइबल आचार्य किडनर कहते हैं, प्रज्ञा न पाने की नाकामी को ईमानदारी से मानना असल में हर कदम के साथ उसे दूर होते देखना, यह जानना कि हमारी कोई भी बात कभी भी चीजों की तह तक नहीं पहुंचती, यह समझदारी की शुरुआत ही नहीं बल्कि शुरुआत तक पहुंचने का एक उत्तम रास्ता है।
अस्तु श्रोताओ, मनुष्य यह स्वीकार करे कि जिस ईश्वर ने उसे रचा वही सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसकी महिमा अपरंपार है।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने लोक धर्मियों परिवार और जीवन को प्रोत्साहन देने हेतु गठित परम धर्म पीठ के द्वारा आयोजित कलिसियाई संघों, विश्वासियों और नए समुदायों को प्रोत्साहित करने वाले संयोजकों के संघों से भेंट की। अपने संबोधन में संत पापा ने उन्हें कहा, कलिसिया यीशु ख्रिस्त के द्वारा एक वैश्विक मुक्ति की निशानी हेतु स्थापित की गई है और यह एक वह स्थल है जहां हम ईश्वर की इच्छा को हर जाति और धर्मों के लोगों के लिए पाते हैं, जो ख्रिस्त में मिलने वाली मुक्ति के फल को प्राप्त और अनुभव करें। इस अर्थ में कलिसिया की प्रकृति को हम संस्कार स्वरूप पाते हैं, जिसका निश्चित रूप में बाह्य और संस्थागत आयाम है। इसके साथ ही हम इसे एक प्रभावकारी एकता के निशानी स्वरूप पाते हैं, जिसके द्वारा हम त्रिएक ईश्वर के जीवन में सहभागी होते हैं। संत पापा ने विश्वासियों और कलिसियाई संघों के सदस्यों से कहा कि यह लोक धर्मियों का प्रशासन है जो बपतिस्मा में हमें ख्रिस्त के राजकीय पदों से विभूषित करता है। यह हमारे लिए वह स्थल बनता है जहां हम दूसरे विश्वासियों संघ के जीवन की सेवा हेतु बुलाए जाते हैं, जो हमें दूसरों की स्वतंत्र अभिव्यक्तियों को सुनने हेतु साझा आत्म परख का निमंत्रण देता है। संत पापा ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में तीन मुख्य बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि यह सबों की भलाई हेतु हो, अर्थात इसके द्वारा समुदाय, संघ और पूरी कलिसिया का हित हो। अतः शासन का दुरुपयोग व्यक्तिगत हित या दुनियावी रूप में प्रसिद्धि और शक्ति के उपयोग हेतु ना हो। दूसरा, यह ऊपर से दबाव के रूप में कभी उपयोग ना हो। अतः स्वतंत्रता में चुनाव जो उसे प्रभावकारी बनाता है। तीसरा, संघ के शासन में आत्म परख शामिल हो जो आदर्शों को सत्यापित करते हुए उनका उचित उपयोग करता हो। संत पापा ने शासन के संबंध में कुछ बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि उनमें एक दूसरे को सुनना, सह उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, भ्रातृत्व में निकटता और सामुदायिक आत्म परख की विशेषताएं सदैव होनी चाहिए। ये सारी चीजें हमारे लिए दिशा निर्देशिका की भांति हैं, लेकिन इनमें सदैव अधिकारी के कार्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संत पापा लियो ने सियेरा लियोन, बांग्लादेश, यमन, रवांडा, नामीबिया, मॉरिशस, चाड और श्रीलंका के अप्रवासी नए राजदूतों का प्रत्यय पत्र स्वीकारते हुए उनका स्वागत किया और उन्हें उनके कार्यों के लिए शुभकामनाएं अर्पित की। संत पापा ने अपने संबोधन में उन्हें कहा, कोई भी देश, समाज और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन अपने को न्यायपूर्ण और मानवीय तब तक घोषित नहीं कर सकता है अगर वह अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी ताकत या खुशहाली के तर्ज पर हिसाब करते हुए हाशिए पर रहने वालों को नजरअंदाज करता हो। वास्तव में सबसे कमजोर और भुला दिए गए लोगों के लिए ख्रिस्त का प्रेम हमें हर तरह के स्वार्थ का परित्याग करते हुए गरीबों और कमजोरों के लिए कार्य करने का आह्वान देता है। संत पापा ने नए राजदूतों का स्वागत करते हुए कहा, ऐसे समय में जब दबदबा कायम करने हेतु हथियारों के जरिए शांति की चाह की जाती है, सभी स्तरों में द्विपक्षीय, राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय एक ऐसी राजनीति की अति आवश्यकता है जो वार्ता को बढ़ावा दे और देशों में एक आम सहमति को स्थापित करने का एक माध्यम बने। उन्होंने कहा, ऐसी वार्ता जो हमें शांति की खोज हेतु सच्चे मार्ग में ले चलती हो या हमें सच्चाई को तोड़ मोड़ किए बिना उन शब्दों में अभिव्यक्ति की मांग करती है जो सत्य को प्रकट करते हैं। संत पापा ने कहा कि केवल इस तरह से गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के मामलों में भरोसा फिर से स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह स्वार्थ का परित्याग करना है जो हम में एकजुटता की भावना लाती है, जिसके माध्यम हम राजनीति में सेवा को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूती लाते हैं, जो हमारे लिए वार्ता और आपसी मिलन हेतु एक स्थल तैयार करता है।
अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने राजदूतों से कहा, आपकी प्रेरिताई वार्ता में मजबूती लाए, आपसी समझ को सुदृढ़ बनाए और हमारी दुनिया में जरूरी शांति स्थापना हेतु योगदान दे। उधर 19 मई को संत पापा लियो 14वें ने कास्टल गंदोल्फो में वैटिकन आकाश लोचन का दौरा किया और वहां मौजूद लोक धर्मियों और शोध कार्य में संलग्न लोगों से भेंट की। यह पहला अवसर नहीं था कि संत पापा लियो ने वैटिकन ऑब्जर्वेटरी की भेंट की। इसके पहले भी वे 20 जुलाई 2025 को चंद्रमा पर उतरने की 56वीं साल गिरह पर वैटिकन आकाश लोचन की भेंट की थी। यह खगोलीय आकाश लोचन रोम के निकट कस्तल गंदोल्फो में स्थित है, जहां संत पापा अपनी व्यस्तता में भी समय निकालकर मंगलवार को थोड़ा आराम में समय बिताया करते हैं। कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि कम्युनिज्म के तहत धन्य शहीदों की शहादत हमें सिखाती है कि कोई ऐसी मानवीय स्थिति नहीं है, चाहे वह कितनी भी बुरी या गलत क्यों ना हो, जिसमें हम ख्रीस्त को नहीं देख सकते हैं। कार्डिनल माइकल चर्नी ने कहा कि शहादत मानवीय बहादुरी का काम नहीं है, बल्कि खुद को ईश्वर की कृपा से तब तक भरने देना है जब तक कि मैं के लिए जगह ना बचे, बल्कि सिर्फ ईश्वर के, तुम और कलीसिया के, हम के लिए जीना हो। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनते।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: अमृत को ग्रहण करने फिर आएंगे।
1: मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
2: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पाप

0: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु येसु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
2: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे येसु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: दुख के दूसरा भेद, येसु कोड़ों से मारे जाते हैं।
1: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद। प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
1: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर,

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, इसराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2025 में गाजा में संघर्ष विराम लागू होने के बाद हिंसा के स्तर में कमी आई है, लेकिन फिलिस्तीनियों की मौतें और बुनियादी ढांचे का ध्वंस अब भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों गाजा पट्टी और पश्चिमी तट व लेबनान में इसराइल के सैन्य हमलों के कारण आम लोग लगातार और बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हिंसक टकराव, विस्थापन और जारी सैन्य अभियानों ने मानवीय जरूरतों को गहरा कर दिया है और पहले से ही सीमित सहायता प्रयासों पर दबाव बढ़ा दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान और पूजा यादव।
3: संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बताया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों गाजा पट्टी और पश्चिमी तट व लेबनान में जारी इसराइल के सैन्य हमलों के कारण आम लोग लगातार और बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हिंसक टकराव, विस्थापन और जारी सैन्य अभियानों ने मानवीय जरूरतों को गहरा कर दिया है और पहले से ही सीमित सहायता प्रयासों पर दबाव और बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुमान के अनुसार गाजा में 43,000 से अधिक लोग इस रूप में घायल हुए हैं कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, जबकि पुनर्वास सेवाएं अपनी क्षमता से अधिक दबाव का सामना कर रही हैं। गाजा में अत्यंत आवश्यक सहायता सामग्री बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। आम लोगों की पीड़ा केवल गाजा तक सीमित नहीं है। पश्चिमी तट के जॉर्डन घाटी इलाके में यहूदी बाशिंदों द्वारा की जा रही हिंसा में हताहतों की संख्या और संपत्ति के नुकसान वाली घटनाओं में वर्ष 2020 के बाद से औसतन मासिक 14 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
4: उधर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट और मानवीय कोऑर्डिनेटर इमरान रजा ने बताया कि 17 अप्रैल से शुरू हुए युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में आम लोग इसराइल के हवाई हमलों से लगातार विनाशकारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसराइल के हवाई हमले और विध्वंस हर दिन जारी हैं, जिससे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ साथ विस्थापित परिवारों में लोग हताहत हो रहे हैं। इमरान रजा ने कहा कि लेबनान में लोगों ने नुकसान, सदमा और जीवित रहने की दिल दहला देने वाली कहानियां बयां की हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत आम लोगों की हर समय रक्षा की जानी चाहिए, जिनमें मानवीय कार्यकर्ता, चिकित्सा दल और बचाव दल भी शामिल हैं। साथ ही आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।
2: राजनैतिक और शांति निर्माण मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि यूक्रेन युद्ध अपने 5वें वर्ष में है और हर दिन बीतने के साथ यह पहले से कहीं अधिक जानलेवा होता जा रहा है। यूएन कार्यालय में निदेशक कायोको गोटोह ने अपने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को बताया कि पिछले एक सप्ताह में फरवरी 2022 में रूसी महासंघ के पूर्ण स्तर पर आक्रमण के बाद से यूक्रेन में की गई अब तक की सबसे बड़ी, सबसे विशाल बमबारी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पूजा यादव।
4: यूक्रेन में रूसी सैन्य बलों ने बीते 48 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर ड्रोन व मिसाइल हमले किए हैं, जिससे वहां जान माल की भीषण हानि हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस सिलसिलेवार हमलों के बाद कहा कि आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और उनकी सदैव रक्षा की जानी चाहिए। खबरों के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर 800 ड्रोन व 56 मिसाइलों से हमले किए, जो कि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के दौरान अब तक के सबसे गहन व लंबे समय तक चलने वाले हमलों में है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इन हमलों की वजह से अति आवश्यक सेवाओं में व्यवधान आया है। राजधानी कीव के कुछ इलाकों में जल आपूर्ति ठप हो गई है और यातायात सीमित है।
2: कहने को तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि प्लास्टिक का प्रयोग एक बार नहीं करके उसे पुनः प्रयोग किया जाए, यानी प्लास्टिक उत्पादों को बार बार प्रयोग किया जाए, मगर पुनः प्रयोग किए गए प्लास्टिक के खाद्य पैकेजिंग में बढ़ते इस्तेमाल के साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की नई रिपोर्ट के अनुसार पुनः प्रयोग यानी रिसाइकलिंग प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल वैसे तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे प्लास्टिक कूड़ा कचरा कम होता है, मगर खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आने वाला प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
4: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनः प्रयोग प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल वैसे तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे प्लास्टिक कूड़ा कचरा कम होता है, मगर वस्तुओं के संपर्क में आने वाला प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। वर्तमान में वैश्विक खाद्य पैकेजिंग बाजार लगातार बढ़ रहा है। साल 2024 में इसकी अनुमानित कीमत $505 अरब से अधिक थी और 2030 तक ये $815 अरब से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। इसके मद्देनजर रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिशा निर्देशों की जरूरत पर बल दिया गया है। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि रिसाइकल किया गया प्लास्टिक और खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आने वाली अन्य वैकल्पिक सामग्री पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन इनके साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं। रिपोर्ट में कई सिफारिशें और आगे की राह भी सुझाई गई है, जैसे रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को अच्छी तरह नियंत्रित करना जरूरी है, जिसमें रासायनिक प्रदूषकों की सफाई और उन्हें हटाना शामिल हो।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में निकोटीन पाउच उत्पादों के तेजी से हो रहे प्रसार और इसके इस्तेमाल के लिए किशोरों और युवाओं को लुभाए जाने वाले आक्रामक प्रचार पर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। संगठन ने चिंता जताई है कि अनेक देशों में इस पर नियंत्रण के लिए नियामक व्यवस्था सीमित या नदारद है, जिससे युवाओं में इसकी लत पड़ने और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने का खतरा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
5: निकोटीन तंबाकू के पौधे में पाया जाने वाला एक रसायन है, जिसके इस्तेमाल की लत आसानी से पड़ जाती है। निकोटीन के छोटे थैलीनुमा पैकेट या पाउच को मसूड़ों और होठ के बीच रखा जाता है और फिर इसका स्वाद धीरे धीरे मुंह में घुलता रहता है। इन पाउच में निकोटीन के अलावा कुछ फ्लेवर, मिठास प्रदान करने वाले तत्व और अन्य सामग्री मौजूद होती हैं और इसकी बिक्री साल दर साल बढ़ती जा रही है। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी एक नई रिपोर्ट में चिंता जताई है कि ये पाउच तैयार करने वाली कंपनियां निकोटीन के इस्तेमाल को युवाओं में सामान्य बनाने के लिए सोशल मीडिया व विज्ञापनों के जरिए आक्रामक प्रचार कर रही हैं, आकर्षक पैकेजिंग का सहारा ले रही हैं और लुभावने मगर भ्रामक संदेश भी अपना रही हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में इसकी बिक्री बढ़ रही है, इनके लिए नियामन व्यवस्था लड़खड़ा रही है। नियम कमजोर है या फिर अनेक देशों में मौजूद ही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि निकोटीन का इस्तेमाल बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। किशोरावस्था में निकोटीन की चपेट में आने से एकाग्रता, सीखने सिखाने की क्षमता और मस्तिष्क के विकास पर असर होता है। निकोटीन का इस्तेमाल हृदय और रक्त वाहिकाओं के रोग के जोखिम से जुड़ा हुआ भी पाया गया है। इसके मद्देनजर UN स्वास्थ्य एजेंसी ने आग्रह किया है कि तंबाकू और निकोटीन के सभी उत्पादों को नियमों के दायरे में लाना होगा।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार को मानवीय आवाजों और चेहरों का संरक्षण शीर्षक से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित कर कहा कि डिजिटल संचार माध्यम जगत से उत्पन्न नवीन चुनौतियों के समक्ष भविष्य के लिए उनकी चिंताएं तर्कसंगत हैं। संत पापा लियो ने कहा कि संप्रेषण और संचार दिवस की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों का वेटिकन में स्वागत करते वे अत्यंत हर्षित थे। उन्होंने कहा, डिजिटल कम्युनिकेशन में माहिर विशेषज्ञ होने के नाते मानव जाति के भविष्य के लिए आपकी चिंता आपको मीडिया और डिजिटल साक्षरता पर सोच विचार हेतु रोम लाई। इस पहल में हिस्सा लेकर आप सभी टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास के इस समय में मानवता के भविष्य की दिशा में योगदान देने हेतु अपनी अपनी प्रवीणता को लाए हैं, जो कलीसिया के मिशन के लिए भी खास तौर पर एक जरूरी सवाल है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि कलीसिया का प्राथमिक मिशन प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति और इसके लिए सुसमाचार प्रचार है, ताकि जैसा कि संत योहन रचित सुसमाचार में लिखा है, वे तुझे सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। संत पापा ने कहा कि इसीलिए हर किसी की यह इच्छा कि वह मुक्ति पाए और सत्य को जाने न सिर्फ हमारे फैसलों और कामों को प्रभावित करे, बल्कि मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और दिशा को भी प्रभावित करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अस्त्र मानवता की सच्ची सेवा में लगाए जाए। संत पापा ने कहा कि यह दुख की बात है कि टेक्नोलॉजी को बिना रोक टोक बढ़ावा दिया जा रहा है और मानव सम्मान की कीमत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी मानवीय रिश्तों की हमारी जरूरत का फायदा उठाती है, तो इससे यह पता चलता है कि हम सच में इंसान होने के मतलब को भूल रहे हैं। इसीलिए यह और भी जरूरी है कि हम इंसानियत के असली मतलब और उसकी महानता को समझें, जैसा कि ईश्वर ने चाहा था। इसी मायने में अभी हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि मानव विज्ञान संबंधी चुनौती है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में प्रकाशित होने वाला मेरा विश्व पत्र इस चुनौती का जवाब देने में मदद करेगा। संत पापा ने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में कलीसिया अपने शैक्षणिक निकाय में मीडिया, सूचना और प्रसारण तथा AI साक्षरता की योजना तथा उसके लागू किए जाने और उसके सदुपयोग के प्रति चेतना जागृत करने को नितांत आवश्यक मानती है, ताकि समाज को रचनात्मक योगदान दिया जा सके। रोम स्थित परम धर्म पीठीय उर्बानियाना विश्वविद्यालय में गुरुवार को डिजिटल टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संस्कृति जगत के विद्वानों तथा पत्रकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मीडिया और समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों का विश्लेषण किया गया। मानवीय चेहरों और आवाजों को संरक्षित करना शीर्षक से आयोजित उक्त सम्मेलन में संप्रेषण और संचार माध्यम दिवस पर प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के संदेश में इंगित किए गए लाभ पर नैतिक गारंटी की जिम्मेदारी, सहयोग और शिक्षा विषयों पर चिंतन किया गया। इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि इन विषयों को व्यावहारिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टेक्नोलॉजी मानव अधीनता के बजाय मानवाधिकार क्षेत्र का साधन बनी रहे। संप्रेषण और संचार माध्यम संबंधी विश्व दिवस पर संत पापा लियो 14वें के संदेश से प्रेरित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन परम धर्म पीठीय संप्रेषण और संचार माध्यम विभाग तथा परम धर्म पीठीय शिक्षा और संस्कृति परिषद द्वारा संत पापा लियो के प्रथम विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास के प्रकाशित होने के कुछ ही दिन पूर्व किया गया था। इसका मूल उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों पर AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों का विश्लेषण करना था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए परम धर्म पीठीय संप्रेषण और संचार माध्यम विभाग के पाओलो रूफिनी ने संरक्षण का अर्थ समझाते हुए कहा, संरक्षण एक ऐसा शब्द है जो हमें चुनौती देता है। इसका अर्थ है प्रेम और जिम्मेदारी के साथ किसी की देखभाल करना। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खतरा इस बात को बिना सोचे समझे मान लेने में है कि ज्ञान अब हमारा नहीं रहा और जो कुछ हमने खुद बनाया है, एल्गोरिदम, प्लेटफॉर्म और ऑटोमेटेड सिस्टम, उसे हमारे लिए सोचने, हमारी जिंदगी और यहाँ तक कि दूसरों से बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह से प्रोग्राम करने का काम सौंपा जा सकता है।
और इसी बीच परम धर्म पीठी शिक्षा और संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल होसे तोलेंटिनो दे मेंडोंसा ने कहा कि ऐसे समय में जब वास्तविकता और अनुकरण के बीच सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं, मानव व्यक्ति को कभी भी एक स्टैटिस्टिक, एक प्रोफाइल या एक एल्गोरिदम तक सीमित नहीं किया जा सकता। मानव हमेशा से कुछ और है, वह एक रहस्य है, एक पुकार है। रोम स्थित वैटिकन रेडियो मुख्यालय में गुरुवार को यूरोपियन संघ के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ कॉमेक के आयोग की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संत पापा लियो 14वें से मुलाकात और 2027 में यूरोप पर पुनर्विचार शीर्षक से एक नए संकलन के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा गया। संत पापा से मुलाकात के विषय में कॉमेक के अध्यक्ष धर्माधीक्ष मरियानो क्रोशाता ने बताया कि संत पापा लियो 14वें के साथ गुरुवार प्रातः संपन्न मुलाकात सौहार्द, प्रत्यक्ष और उदार रही। उन्होंने कहा कि वस्तुतः हमारे कार्य और संत पापा अपनी धर्म शिक्षा, अपनी स्थिति और अपनी पहलों के माध्यम से जो सिखाते हैं और गवाही देते हैं, उसके बीच एक मजबूत तालमेल था। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ शांति की एक योजना के तौर पर बना था और शांति इसकी जड़ों और इसकी पहचान में है। अस्तु इसे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के साथ साथ बहुपक्षीयवाद को बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि संत पापा ने स्पष्टतः स्मरण दिलाया है। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि ध्रुवीकरण से चिन्हित दुनिया में यूरोपीय संघ लोक लुभावनवाद के परिणाम स्वरूप एकता के अभाव में कमजोर पड़ गया है। धर्माधीश क्रोशाती ने कहा कि सुसमाचार के शब्द तथा कलीसिया की धर्म शिक्षा को लागू किया जाना आज हमारे समक्ष एक चुनौती है, जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम भय, सुविधा या इससे भी बुरा किसी भी संभावित राजनीतिक पसंद की वजह से पीछे नहीं हट सकते। और यूरोपीय धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ के उपाध्यक्ष कोपेनहागन के धर्माध्यक्ष जेज़लाव कोज़ोन ने आप्रवासियों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित कराया और दुख जताया कि दुर्भाग्यवश आप्रवासियों को प्रायः बलि का बकरा और समाज का दुश्मन बना दिया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि आप्रवास का मुद्दा कई दशकों से चला आ रहा है, यह कोई नई बात नहीं है, किंतु उन्होंने कहा नई बात यह कि आज यूरोपीय राजनीतिज्ञ लोक लुभावनवाद का इस्तेमाल कर इसे कई समाजों के लिए एक कथित खतरे में बदल रहे हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, इसराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2025 में गाजा में संघर्ष विराम लागू होने के बाद हिंसा के स्तर में कमी आई है, लेकिन फिलिस्तीनियों की मौतें और बुनियादी ढांचे का ध्वंस अब भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों गाजा पट्टी और पश्चिमी तट व लेबनान में इसराइल के सैन्य हमलों के कारण आम लोग लगातार और बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हिंसक टकराव, विस्थापन और जारी सैन्य अभियानों ने मानवीय जरूरतों को गहरा कर दिया है और पहले से ही सीमित सहायता प्रयासों पर दबाव बढ़ा दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान और पूजा यादव।
3: संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बताया है कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों गाजा पट्टी और पश्चिमी तट व लेबनान में जारी इसराइल के सैन्य हमलों के कारण आम लोग लगातार और बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हिंसक टकराव, विस्थापन और जारी सैन्य अभियानों ने मानवीय जरूरतों को गहरा कर दिया है और पहले से ही सीमित सहायता प्रयासों पर दबाव और बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुमान के अनुसार गाजा में 43,000 से अधिक लोग इस रूप में घायल हुए हैं कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, जबकि पुनर्वास सेवाएं अपनी क्षमता से अधिक दबाव का सामना कर रही हैं। गाजा में अत्यंत आवश्यक सहायता सामग्री बहुत कम मात्रा में पहुंच रही है। आम लोगों की पीड़ा केवल गाजा तक सीमित नहीं है। पश्चिमी तट के जॉर्डन घाटी इलाके में यहूदी बाशिंदों द्वारा की जा रही हिंसा में हताहतों की संख्या और संपत्ति के नुकसान वाली घटनाओं में वर्ष 2020 के बाद से औसतन मासिक 14 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
4: उधर लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट और मानवीय कोऑर्डिनेटर इमरान रजा ने बताया कि 17 अप्रैल से शुरू हुए युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में आम लोग इसराइल के हवाई हमलों से लगातार विनाशकारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसराइल के हवाई हमले और विध्वंस हर दिन जारी हैं, जिससे महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के साथ साथ विस्थापित परिवारों में लोग हताहत हो रहे हैं। इमरान रजा ने कहा कि लेबनान में लोगों ने नुकसान, सदमा और जीवित रहने की दिल दहला देने वाली कहानियां बयां की हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत आम लोगों की हर समय रक्षा की जानी चाहिए, जिनमें मानवीय कार्यकर्ता, चिकित्सा दल और बचाव दल भी शामिल हैं। साथ ही आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।
2: राजनैतिक और शांति निर्माण मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने सुरक्षा परिषद को आगाह किया है कि यूक्रेन युद्ध अपने 5वें वर्ष में है और हर दिन बीतने के साथ यह पहले से कहीं अधिक जानलेवा होता जा रहा है। यूएन कार्यालय में निदेशक कायोको गोटोह ने अपने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को बताया कि पिछले एक सप्ताह में फरवरी 2022 में रूसी महासंघ के पूर्ण स्तर पर आक्रमण के बाद से यूक्रेन में की गई अब तक की सबसे बड़ी, सबसे विशाल बमबारी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पूजा यादव।
4: यूक्रेन में रूसी सैन्य बलों ने बीते 48 घंटों के दौरान बड़े पैमाने पर ड्रोन व मिसाइल हमले किए हैं, जिससे वहां जान माल की भीषण हानि हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने इस सिलसिलेवार हमलों के बाद कहा कि आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और उनकी सदैव रक्षा की जानी चाहिए। खबरों के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर 800 ड्रोन व 56 मिसाइलों से हमले किए, जो कि 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध के दौरान अब तक के सबसे गहन व लंबे समय तक चलने वाले हमलों में है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार इन हमलों की वजह से अति आवश्यक सेवाओं में व्यवधान आया है। राजधानी कीव के कुछ इलाकों में जल आपूर्ति ठप हो गई है और यातायात सीमित है।
2: कहने को तो ये बात बहुत अच्छी लगती है कि प्लास्टिक का प्रयोग एक बार नहीं करके उसे पुनः प्रयोग किया जाए, यानी प्लास्टिक उत्पादों को बार बार प्रयोग किया जाए, मगर पुनः प्रयोग किए गए प्लास्टिक के खाद्य पैकेजिंग में बढ़ते इस्तेमाल के साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की नई रिपोर्ट के अनुसार पुनः प्रयोग यानी रिसाइकलिंग प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल वैसे तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे प्लास्टिक कूड़ा कचरा कम होता है, मगर खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आने वाला प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
4: संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनः प्रयोग प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल वैसे तो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इससे प्लास्टिक कूड़ा कचरा कम होता है, मगर वस्तुओं के संपर्क में आने वाला प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। वर्तमान में वैश्विक खाद्य पैकेजिंग बाजार लगातार बढ़ रहा है। साल 2024 में इसकी अनुमानित कीमत $505 अरब से अधिक थी और 2030 तक ये $815 अरब से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। इसके मद्देनजर रिपोर्ट में वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिशा निर्देशों की जरूरत पर बल दिया गया है। रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि रिसाइकल किया गया प्लास्टिक और खाद्य वस्तुओं के संपर्क में आने वाली अन्य वैकल्पिक सामग्री पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन इनके साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं। रिपोर्ट में कई सिफारिशें और आगे की राह भी सुझाई गई है, जैसे रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को अच्छी तरह नियंत्रित करना जरूरी है, जिसमें रासायनिक प्रदूषकों की सफाई और उन्हें हटाना शामिल हो।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया भर में निकोटीन पाउच उत्पादों के तेजी से हो रहे प्रसार और इसके इस्तेमाल के लिए किशोरों और युवाओं को लुभाए जाने वाले आक्रामक प्रचार पर एक गंभीर चेतावनी जारी की है। संगठन ने चिंता जताई है कि अनेक देशों में इस पर नियंत्रण के लिए नियामक व्यवस्था सीमित या नदारद है, जिससे युवाओं में इसकी लत पड़ने और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने का खतरा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
5: निकोटीन तंबाकू के पौधे में पाया जाने वाला एक रसायन है, जिसके इस्तेमाल की लत आसानी से पड़ जाती है। निकोटीन के छोटे थैली नुमा पैकेट या पाउच को मसूड़ों और होठ के बीच रखा जाता है और फिर इसका स्वाद धीरे धीरे मुंह में घुलता रहता है। इन पाउच में निकोटीन के अलावा कुछ फ्लेवर, मिठास प्रदान करने वाले तत्व और अन्य सामग्री मौजूद होती हैं, और इसकी बिक्री साल दर साल बढ़ती जा रही है। UN स्वास्थ्य एजेंसी ने अपनी एक नई रिपोर्ट में चिंता जताई है कि ये पाउच तैयार करने वाली कंपनियां निकोटीन के इस्तेमाल को युवाओं में सामान्य बनाने के लिए सोशल मीडिया व विज्ञापनों के जरिए आक्रामक प्रचार कर रही हैं, आकर्षक पैकेजिंग का सहारा ले रही हैं और लुभावने मगर भ्रामक संदेश भी अपना रही हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में इसकी बिक्री बढ़ रही है, इनके लिए नियामन व्यवस्था लड़खड़ा रही है। नियम कमजोर हैं या फिर अनेक देशों में मौजूद ही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगाह किया है कि निकोटीन का इस्तेमाल बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। किशोरावस्था में निकोटीन की चपेट में आने से एकाग्रता, सीखने सिखाने की क्षमता और मस्तिष्क के विकास पर असर होता है। निकोटीन का इस्तेमाल हृदय और रक्त वाहिकाओं के रोग के जोखिम से जुड़ा हुआ भी पाया गया है। इसके मद्देनजर UN स्वास्थ्य एजेंसी ने आग्रह किया है कि तंबाकू और निकोटीन के सभी उत्पादों को नियमों के दायरे में लाना होगा।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने शुक्रवार को मानवीय आवाजों और चेहरों का संरक्षण शीर्षक से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित कर कहा कि डिजिटल संचार माध्यम जगत से उत्पन्न नवीन चुनौतियों के समक्ष भविष्य के लिए उनकी चिंताएं तर्कसंगत हैं। संत पापा लियो ने कहा कि संप्रेषण और संचार दिवस की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित उक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों का वेटिकन में स्वागत करते वे अत्यंत हर्षित थे। उन्होंने कहा, डिजिटल कम्युनिकेशन में माहिर विशेषज्ञ होने के नाते मानव जाति के भविष्य के लिए आपकी चिंता आपको मीडिया और डिजिटल साक्षरता पर सोच विचार हेतु रोम लाई। इस पहल में हिस्सा लेकर आप सभी टेक्नोलॉजी के तेजी से विकास के समय में मानवता के भविष्य की दिशा में योगदान देने हेतु अपनी अपनी प्रवीणता को लाए हैं, जो कलीसिया के मिशन के लिए भी खास तौर पर एक जरूरी सवाल है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि कलीसिया का प्राथमिक मिशन प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति और इसके लिए सुसमाचार प्रचार है, ताकि जैसा कि संत योहन रचित सुसमाचार में लिखा है, वे तुझे सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। संत पापा ने कहा कि इसीलिए हर किसी की यह इच्छा कि वह मुक्ति पाए और सत्य को जाने न सिर्फ हमारे फैसलों और कामों को प्रभावित करे, बल्कि मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और दिशा को भी प्रभावित करे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अस्त्र मानवता की सच्ची सेवा में लगाए जाएं। संत पापा ने कहा कि यह दुख की बात है कि टेक्नोलॉजी को बिना रोक टोक बढ़ावा दिया जा रहा है और मानव सम्मान की कीमत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब टेक्नोलॉजी मानवीय रिश्तों की हमारी जरूरत का फायदा उठाती है, तो इससे यह पता चलता है कि हम सच में इंसान होने के मतलब को भूल रहे हैं। इसीलिए यह और भी जरूरी है कि हम इंसानियत के असली मतलब और उसकी महानता को समझें, जैसा कि ईश्वर ने चाहा था। इसी मायने में अभी हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, वह टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि मानव विज्ञान संबंधी चुनौती है, और मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में प्रकाशित होने वाला मेरा विश्व पत्र इस चुनौती का जवाब देने में मदद करेगा। संत पापा ने कहा कि इसी पृष्ठभूमि में कलीसिया अपने शैक्षणिक निकाय में मीडिया, सूचना और प्रसारण तथा AI साक्षरता की योजना तथा उसके लागू किए जाने और उसके सदुपयोग के प्रति चेतना जागृत करने को नितांत आवश्यक मानती है, ताकि समाज को रचनात्मक योगदान दिया जा सके। रोम स्थित परम धर्म पीठीय उर्बानियाना विश्वविद्यालय में गुरुवार को डिजिटल टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संस्कृति जगत के विद्वानों तथा पत्रकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मीडिया और समाज पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों का विश्लेषण किया गया। मानवीय चेहरों और आवाजों को संरक्षित करना शीर्षक से आयोजित उक्त सम्मेलन में संप्रेषण और संचार माध्यम दिवस पर प्रकाशित संत पापा लियो 14वें के संदेश में इंगित किए गए लाभ पर नैतिक गारंटी की जिम्मेदारी, सहयोग और शिक्षा विषयों पर चिंतन किया गया। इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि इन विषयों को व्यावहारिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टेक्नोलॉजी मानव अधीनता के बजाय मानवाधिकार क्षेत्र का साधन बनी रहे। संप्रेषण और संचार माध्यम संबंधी विश्व दिवस पर संत पापा लियो 14वें के संदेश से प्रेरित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन परम धर्म पीठीय संप्रेषण और संचार माध्यम विभाग तथा परम धर्म पीठीय शिक्षा और संस्कृति परिषद द्वारा संत पापा लियो के प्रथम विश्व पत्र मैनिफिका उमानितास के प्रकाशित होने के कुछ ही दिन पूर्व किया गया था। इसका मूल उद्देश्य व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों पर AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभावों का विश्लेषण करना था। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए परम धर्म पीठीय संप्रेषण और संचार माध्यम विभाग के पाओलो रूफिनी ने संरक्षण का अर्थ समझाते हुए कहा, संरक्षण एक ऐसा शब्द है जो हमें चुनौती देता है। इसका अर्थ है प्रेम और जिम्मेदारी के साथ किसी की देखभाल करना। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा खतरा इस बात को बिना सोचे समझे मान लेने में है कि ज्ञान अब हमारा नहीं रहा और जो कुछ हमने खुद बनाया है, एल्गोरिदम, प्लेटफॉर्म और ऑटोमेटेड सिस्टम, उसे हमारे लिए सोचने, हमारी जिंदगी और यहाँ तक कि दूसरों से बातचीत करने के तरीके

को पूरी तरह से प्रोग्राम करने का काम सौंपा जा सकता है। और इसी बीच परम धर्म पीठे शिक्षा और संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल होसे तोलेंटिनो दे मेंडोंसा ने कहा कि ऐसे समय में जब वास्तविकता और अनुकरण के बीच सीमाएं तेजी से धुंधली होती जा रही हैं, मानव व्यक्ति को कभी भी एक स्टैटिस्टिक, एक प्रोफाइल या एक एल्गोरिदम तक सीमित नहीं किया जा सकता। मानव हमेशा से कुछ और है, वह एक रहस्य है, एक पुकार है। रोम स्थित वैटिकन रेडियो मुख्यालय में गुरुवार को यूरोपियन संघ के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ कॉमेक के आयोग की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संत पापा लियो 14वें से मुलाकात और 2027 में यूरोप पर पुनर्विचार शीर्षक से एक नए संकलन के प्रकाशन का प्रस्ताव रखा गया। संत पापा से मुलाकात के विषय में कॉमेक के अध्यक्ष धर्माधीक्ष मरियानो क्रोशाता ने बताया कि संत पापा लियो 14वें के साथ गुरुवार प्रातः संपन्न मुलाकात सौहार्द, प्रत्यक्ष और उदार रही। उन्होंने कहा कि वस्तुतः हमारे कार्य और संत पापा अपनी धर्म शिक्षा, अपनी स्थिति और अपनी पहलों के माध्यम से जो सिखाते हैं और गवाही देते हैं, उसके बीच एक मजबूत तालमेल था। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ शांति की एक योजना के तौर पर बना था और शांति इसकी जड़ों और इसकी पहचान में है। आज तो इसे देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच बातचीत को बढ़ावा देने के साथ साथ बहुपक्षीयवाद को बढ़ावा देना चाहिए, जैसा कि संत पापा ने स्पष्टतः स्मरण दिलाया है। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि ध्रुवीकरण से चिन्हित दुनिया में यूरोपीय संघ लोक लुभावनवाद के परिणाम स्वरूप एकता के अभाव में कमजोर पड़ गया है। धर्माधीश क्रोशाती ने कहा कि सुसमाचार के शब्द तथा कलीसिया की धर्म शिक्षा को लागू किया जाना आज हमारे समक्ष एक चुनौती है, जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम भय, सुविधा या इससे भी बुरा किसी भी संभावित राजनीतिक पसंद की वजह से पीछे नहीं हट सकते। और यूरोपीय धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ के उपाध्यक्ष कोपेनहागन के धर्माधीश जेस्लाव कोजोन ने आप्रवासियों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित कराया और दुख जताया कि दुर्भाग्यवश आप्रवासियों को प्रायः बलि का बकरा और समाज का दुश्मन बना दिया जाता है। उन्होंने स्वीकार किया कि आप्रवास का मुद्दा कई दशकों से चला आ रहा है, यह कोई नई बात नहीं है, किंतु उन्होंने कहा नई बात यह कि आज यूरोपीय राजनीतिज्ञ लोक लुभावनवाद का इस्तेमाल कर इसे कई समाजों के लिए एक कथित खतरे में बदल रहे हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।